श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन साजन मिश्रा जी और कविता कृष्णमूर्ति का।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं पारंपरिक गीत और संगीत रचना, गाई है मन्ना डे ने।

आइए सुनते हैं श्रीनिवास खड़े जी के संगीत निर्देशन में गुरु नानक जी की भक्ति रचना। इसे गाया है पंडित उल्हास कशाळकर ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन साजन मिश्रा जी और कविता कृष्णमूर्ति का।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं पारंपरिक गीत और संगीत रचना, गाई है मन्ना डे ने।

आइए सुनते हैं श्रीनिवास खड़े जी के संगीत निर्देशन में गुरु नानक जी की भक्ति रचना। इसे गाया है पंडित उल्हास कशाळकर ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी के आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन साजन मिश्रा जी और कविता कृष्णमूर्ति का।